इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं है, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे। इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय, छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी, प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली, आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं। हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतर आत्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति

रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भगवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है। गुरुदेव शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है, उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुवत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे, बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया, बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहे, रूप समुद्र गाद, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहे। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो,
पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम

हमारा प्रवेश हो प्यारे जू की रसमय लीला में, बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है।
प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे शांत, अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सहरा है। अब क्या हुआ, बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है, कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में विश्व में कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो, क्यों, क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। ताजी तीरथ

0: प्रभु। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और आह्वान का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो, जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे बिलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं, और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है। ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं? ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े देवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरनते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में है, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोली बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेरण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं, जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें, सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं, तो वहां रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स है उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें? और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहां पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया, गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पहले पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरु जी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एजुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: रिजर्वेशन ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
2: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीज जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है ये, बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं। तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
3: नहीं,
2: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आएं कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज का आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
1: कई बार जब मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गुड मॉर्निंग फरीदा बाय। तो वीकेंड का काउंटडाउन हो गया है शुरू। आई नो फ्राइडे वाली एक्साइटमेंट अभी बाकी है, लेकिन तब तक के लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज देना तो बनता ही है ना। तो भाई अंजलि ऑन एयर हो गई है, सुबह 7 से 11 बजे तक आपके साथ रहने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें आज मैं लेकर आई हूँ। बॉलीवुड का तड़का मिलेगा यहाँ पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, साथ ही हेल्थ और फिटनेस की बात भी होने वाली है, और साथ ही आपके शहर में आज मौसम का क्या हाल है, ट्रैफिक क्या कहता है, और साथ ही साइबर स्कैमर से खुद को किस तरह से बचाना है, ये सब बताने वाली हूँ। आप तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाली चाय की गर्म गर्म सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। देखिए यार, हाल चाल बेहतर है, लेकिन इस बेहतर हाल चाल को ना और भी बेहतरीन बनाने के लिए आ गई हूँ। बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, बहुत सारी चीजों के साथ आई हूँ आज। लेकिन सबसे पहले ना बात कर लेते हैं आज के वेदर की। तो मौसम क्या कहता है। देखिए अगर मैं मौसम की बात करूँ, वेदर की बात करूँ, हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 34 डिग्री और मिनिमम रहने वाले 25 डिग्री। विंड स्पीड आपको 5 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 67%। और इसी के साथ यार आज बिना धूप वाला मौसम यानी कि सनी सनी रहने वाला है पूरा दिन। अच्छी खासी धूप है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है इन दिनों। तो आपको पता है ना क्या करना है भाई, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं थोड़े ही देर में।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गया। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इल्लीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना, ना। मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है। और लव योरसेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो। ये ट्रैक जो है खास आपके लिए,

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

आज मैं एक चीज सोच कर देखेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रील से ब्रेक लिया जाए तो क्या होगा। मैं बताती हूँ ना क्या होगा। ना तो सुबह उठते ही स्क्रोलिंग होगी, ना ही एक आखिरी रील वाला झूठ होगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना एक मैं स्टडी लेकर आई हूँ, तो स्टडी में ना एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों का ब्रेक लेने पर ना आपको मिल सकता है ज्यादा टाइम, बेहतर मेंटल क्लैरिटी, मूड में सुधार और सेल्फ स्टीम में बूस्ट। तो देखिए भाई, बात तो फायदे की है यार, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं ना, एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, डेटा तो छोड़ दो यार, डेटा तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पता है हमारा फोन भी इफेक्ट होता है, हमारी फोन की बैटरी भी खराब होती है। ये तो चलो दो ऐसी ऐसी बातें थी कि ठीक है, जिनका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है? हम अपनी स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम किसी रील को पूरा खत्म होने तक कभी इंतजार नहीं करते। अब आप सोचे कि हमारा फोकस्ड करने का जो तरीका है वो कितना खराब हो गया है, हमारा डिसीजन मेकिंग कितना खराब हो गया है, और हमने अपने माइंड पर कंट्रोल भी खो दिया। हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं, हमें लगता है वही सच्चाई, जिसकी वजह से हम इतना स्ट्रेस भी ले लेता है कि यार सब घूम रहे हैं, सबकी अच्छी जॉब हो रही है, सब अच्छा पैकेज ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें ना कंपैरिजन को भी लेकर आती है। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया डिजिटल डिटॉक्स करने का खुद को। और स्टडी में ना ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने वालों ने ना स्ट्रेस घटने, ओवरऑल वेलबींग बेहतर होने जैसे फायदे भी देखे हैं। तो शायद 7 दिन रील से दूरी, बोरियत नहीं ब्रेन की छुट्टी हो सकती है, और साथ ही आपको मिल सकता है एक बढ़िया रीस्टार्ट, एक स्टार्ट जिससे ना आप नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आ सको। इस बार आपने करना क्या है, इस बार ना आपने एक हफ्ते का चैलेंज लेना है खुद से, कोई रील नहीं देखनी है, कोई रील बनानी भी नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करना है खुद को, और फिर देखिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और फटाफट से यार मैं तो चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा काम भी है मेरे पास। आपका यह अभी भी बैठकर रील देख रहे हो ना, देखते रहो, और इसी के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी वक्त हो गया है इस म्यूजिक ब्रेक का।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गया। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है, जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिया, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थ्रेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गई जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से अपनी सारी सेविंग जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना ना, मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है, और लव योरसेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो। ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुककर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

हेलो हेलो जी। तो आज की फील गुड स्टोरी मैं लेकर आ गई हूँ और आज की स्टोरी ने ना सच में मेरा दिल जीत लिया यार। एक आवाज ब्रो जूते लेगा और बस, ये जो सेंटेंस है ना इसने किसी का दिन बना दिया। तो देखिए, कभी कभी किसी का पूरा दिन बनाने के लिए ना बस एक छोटा सा जेस्चर काफी होता है। ये बताने वाली है हमें आज की स्टोरी। तो भाई, सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर अमन शर्मा ने ना एक डिलीवरी पार्टनर को देखा जो कि अपने चप्पले पहनकर डिलीवरी करने के लिए आए थे। तभी अमन ने ना अपने ब्रांडेड शूज निकालकर उन्हें ऑफर कर दिए कि ब्रो जूते लेगा, और बस ये जेस्चर। इतना ही काफी होता है किसी का दिन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये डिलीवरी पार्टनर है ना, पहले इसने शूज लेने से मना कर दिया, लेकिन अमन ने इंसिस्ट किया और कहा कि भाई देखो, ये यूज्ड नहीं है, ये मेरे न्यू ब्रांडेड शूज हैं, तो मैं एकदम न्यू चीज तुम्हें दे रहा हूँ। अमन के इतना फोर्स करने के बाद ना, तब जाकर डिलीवरी पार्टनर ने हाँ किया। इसलिए कहते हैं कि आपकी छोटी सी काइंडनेस ना किसी का पूरा दिन बना सकती है। तो अपने अंदर ये काइंडनेस जरूर रखेगा। लव केयर एम्पति के साथ ना हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

हेलो हेलो जी हैन जी, क्या हाल चाल है फरीदाबाद? देखिए यार, हाल चाल बहुत बेहतर है आई नो, और बेहतरीन करने के लिए ही तो मैं आई हूँ। और ना आज मैं एक वायरल स्टोरी लेकर आ गई हूँ। अगर मैं बात करूँ ना आई लव यू की, तो आजकल के टाइम पर ना आई लव यू कहना बहुत इजी हो गया है, करना ही है। एक मैसेज टाइप करना है, एक इमोजी भेजना और बस प्यार का इजहार हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना उस दौर की, उस जमाने की, तो एक बार इमेजिन कीजिएगा 1964 में किसी ने अपनी वाइफ के लिए 8 फीट लंबा हैंड रिटन लव लेटर लिखा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ना ये पुराना लव लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस लव लेटर की फोटो आई, फिर वीडियो आई, और जब वीडियो सामने आई ना लोग पागल हो पाए। और बताए खास बात क्या है? खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये लेटर 8 फीट लंबा है, बल्कि खास बात ये है कि सोच के जरा देखिएगा कि इसे लिखने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस, कितने इमोशंस लगे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द वायरल पोस्ट, ये कपल 62 साल से शादीशुदा है, यानी कि इन्होंने ना एक दूसरे को अपने 62 साल दिए। अब सोचिए कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को माफ किया होगा, कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया होगा, और इसी तरह करते करते ना आज ये शादी यहाँ तक पहुँची है। और अगर आज प्यार की बात करें ना, तो प्यार सिर्फ डीएम तक रह गया, व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गया। और अगर ज्यादा प्यार किसी को एक्सप्रेस करना हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर कर देते हैं बस। लेकिन अगर देखी जाए ना, प्यार की असली वैल्यू ना उन शब्दों में नहीं है जो आप लिखते हो, बल्कि उस पेशेंस में जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस टाइम में है जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस एफर्ट्स में है जो आपने किसी के लिए किए होता है। तो आज मैं कहानी इसलिए लेकर आई थी, अपने प्यार को ना थोड़ा सा और एफर्ट्स दे करना स्पेशल बना दो। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

साथ तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, अभी मेरे पंखे को कुछ हो गया यार। अभी नया लगवाया था और फिर मैं अगर पापा को बोलूंगी ना पापा यार मेरा पंखा चेंज करवा दो, उन्होंने यही कहना है कि बेटा तेरे रूम का पंखा ही इतना धीरे क्यों चलने लगता है। तो भाई देखिए अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही है ना तो आज मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आई हूँ। अब आप बोलेंगे यार अंजलि इतना इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना, तो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना। अगर आपके घर का ही पंखा अचानक से स्लो हो गया ना तो नया लेने की बजाय ना ये जरूर सुनकर जाएगा। गर्मियों में ना अक्सर ऐसा होता है कि फैन की स्पीड कम हो जाती है, तो करना क्या है अपने, सबसे पहले ना नया पंखा लेने से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो फैन में ना हो करना किसी छोटी सी चीज में हो। ये मैंने आज सोचा और तभी मैंने इस पर रिसर्च किया और आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज पंखे को ठीक करने का जुगाड़। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्लेड से या फिर जो मोटर है ना उसके डस्ट को क्लीन कराना है, एंड फिर देखिएगा जो बाद में कैपेसिटर है ना, रेगुलेटर और जितनी भी वायरिंग है ना उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आप कि फैन की मोटर बार बार गर्म हो रही है जल्दी और हवा नहीं आ रही, फिर आपको खुद से नहीं करना कुछ भी, फिर ना आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले खुद से कोशिश करो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, नया पंखा मत खरीदना। बिकॉज होता क्या है ना गर्मियों में यूजली यही प्रॉब्लम आती है पंखों में और जिसकी वजह से ना हम फटाफट से दुकान पर चले जाते हैं खर्चा करने के लिए। तो देखिए ये ना आज का बिजनेस मंत्र भी है, अगर आपको भी लगता है ना कि ऐसे थोड़ा बहुत पंखा साफ करके आप पैसा कमा सकते हो तो यार आप कर सकते हो, ये चीज ट्राई जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्राई मिलता है थोड़ी ही देर में।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

यार कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया और ये स्कैम आया है कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम की ट्रैप में फंस गया। और हुआ कि सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखे। किसी भी लॉटरी किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.government.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में। के आलम में

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिलम क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

दिल्ली दिल्ली है दीवानों की दिल्ली। देखिए भाई, दिल्ली दीवानों वाली तो है, लेकिन दिल्ली ना थोड़े से नए ट्रेंड वाली भी है। अब यार, कभी सोचा था कि किसी की बाइक चोरी हो जाएगी और चोरी होने के बाद ना आपको व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेज दिया जाएगा? तो भाई देखिए, दिल्ली के नारायणा एरिया से ना KTM स्पोर्ट्स बाइक चोरी हो गई और ऑनर हर्षित जो है उन्होंने पुलिस में कम्प्लेन भी कर दी, लेकिन FIR के बाद ना उनके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, बाइक मेरे पास है, 10,002 वापस ले लो अपनी बाइक। तो भाई यहाँ पर ना पैसे मांगने का ही तरीका बहुत ही बढ़िया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने वाले ने QR कोड भी भेज दिया, कहा कि पहले 5,000 एडवांस भेजो, फिर बाइक की लोकेशन और वीडियो शेयर करूंगा, एंड उसके बाद ना 5,000 और देकर अपनी बाइक ले जाना। लेकिन हर्षित ने ना यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट मूव खेला, ऑनलाइन पेमेंट करने के बजाय ना कैश में डील करने को कहा और कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ना मेरे सामने आना होगा कैश लेने के लिए, अगर तुम रेडी हो तो भाई बता दो, मैं अभी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर अब हर्षित ने क्या किया, हर्षित ने ना पुलिस साइबर सेल की हेल्प से मोबाइल नंबर और QR कोड से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट थे ना उनकी जांच की, पुलिस ने वेरीफाई किया मैसेज भेजने वाले एक्चुअल बाइक थेफ्ट में इन्वॉल्व है या फिर किसी ने थेफ्ट की इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर अलग से फ्रॉड करने की कोशिश किया, ये सारी चीजों का पता लगाया पुलिस ने और उसके बाद ना NVO से पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक अलग तरीके से अवेयर करने आई हूँ, हो सकता है कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो जाए, लेकिन उस फ्रॉड में फंसने के बजाय ना आप ट्राई करना कि हेल्प ले लो। अब वो हेल्प आपको किसकी लेनी है, अपने पड़ोसियों की नहीं लेनी, यार पड़ोसी ना अक्सर फंसा देता है, आपको हेल्प लेनी है पुलिस की, पुलिस के पास जाना है, सारी डिटेल्स देनी है, फिर देखेगा जो भी आपके साथ स्कैम हुआ ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो याद रखिए, अगर चोरी के बाद कोई भी आपको QR कोड भेजता है ना तो कभी भी पेमेंट मत कीजिएगा। Be aware, be updated और इसी के साथ enjoy कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो डस्टबिन में आप कूड़ा डाल रहे हैं ना, ये जो डस्टबिन में आप चीजें डाल रहे हैं, आपको पता है इन चीजों से ना कल जाकर बिल्डिंग मटेरियल भी बन सकता है। यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर, इसीलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आती हूँ। तो भाई देखिए, जापान से टेक्नोलॉजी की एक ऐसी न्यूज सामने आई है ना, जिसे सुनने के बाद ना आप कहेंगे कचरे का भी इतना बड़ा काम हो सकता है, ये तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि डिस्कार्डेड फूड्स और वेजिटेबल्स को यूज करके एक प्लांट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप किया गया है, और प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले जितना भी फूड वेस्ट है कलेक्ट किया जाएगा, फूड वेस्ट को ड्राई करके पाउडर बनाया जाएगा, फिर पानी ऐड करके और उसमें थोड़ी हीट प्रेशर के साथ मोल्ड किया जाएगा, जैसे कि कुछ देर में आपको ईंटें मिल जाएंगी। और ये ईंटें बनी होंगी किससे भाई, आपके फूड वेस्ट से। यानी कभी आपने सोचा है जिस खाने को हम वेस्ट समझ रहे थे कितनी काम की चीज है यार। और अगर ऐसी ही चीजें रिसाइकल होती रही ना, तो एक दिन कुछ वेस्ट ही नहीं बचेगा, सब कुछ यूज्ड में आ जाएगा। इसी को फिर रीयूज रिसाइकल हम लोग कहेंगे, और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही सस्टेनेबल है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट को उसकी चीजें भी मिलेंगी, और फ्यूचर ना यार, फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। देखिए जापान बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक दिन हम लोग भी कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जरूर, और हम लोग भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, लेकिन ये इनोवेशन ना कुछ हटके है। तो ऐसे इनोवेशन सुनने के लिए ना बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

कभी सोचा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है? इंसान की बात नहीं कर रही यार, स्टेट की बात कर रही हूँ यार। बिकॉज सोशल मीडिया पर ना इंडिया टॉप 10 हैप्पीएस्ट स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की रैंकिंग हो चुकी है और ये रैंकिंग ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अच्छा पहले ये बताइए, कभी आपने सोचा था कि आपका स्टेट भी इस रैंकिंग के अंदर आएगा? तो भाई नंबर वन आया हिमाचल प्रदेश, सेकेंड नंबर पर है मिजोरम, थर्ड नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पर है पंजाब, फिफ्थ पर है गुजरात, सिक्स्थ पर है सिक्किम, सेवन पर है पोंडिचेरी, एट्थ पर है अरुणाचल प्रदेश, नाइन्थ पर है केरला और टेंथ पर है मेघालय। तो भाई ये बताइए, अगर आप इसमें से किसी एक स्टेट में रहते हैं तो पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, और अगर नहीं रहते ना तो कोशिश कीजिए आपका स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अंदर आ जाए, और अगर नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ना सिर्फ ये था कि यार खुश रहना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी को जीना है, अदरवाइज तो जिंदगी हम सब काट ही रहे हैं। और यार ये जिंदगी अगर बिना खुशी के जीना तो कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। तो इस जिंदगी को और भी ज्यादा हसीन बनाने के लिए, और भी ज्यादा हैपनिंग बनाने के लिए ना खुशियां ढूंढना शुरू कर दीजिए, और अगर खुशियां नहीं मिलती है तो खुशियां क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ इंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है थोड़ी देर में।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

आपको तो पता नहीं यार, पर मेरे लिए ना आज का दिन बहुत ही बोरियत भरा रहा है। पता नहीं क्यों यार, आज सुबह में ना बहुत बोरियत सी थी। अगर बार ना मन करता कि कुछ मत करो, आज ना मेरा वही मन हो रहा है। आज मैं आई थी, मैंने आपसे बातें बहुत सारी की हैं, और पता नहीं क्यों अब मुझे ना यार कॉफी की याद आ रही है। मन नहीं कर रहा अब कुछ भी काम करने का। तो अभी स्टूडियो से जाने के बाद ना पहले तो मैं फटाफट से कॉफी पीने वाली हूँ। और आज मैं टिफिन में कुछ नहीं लेकर आई हूँ, बिकॉज बोला ना आज मेरा कुछ करने का मन नहीं था, तो आज मेरा टिफिन लाने का भी मन नहीं था। और देखिए भाई, जब तक वीकेंड नहीं आता ना तब तक ये बोरियत तो झेलनी पड़ेगी ना। तो कोई बात नहीं, एक गाने एंजॉय करके झेल लेंगे। अभी आधा दिन तो मैंने निकाल ही दिया है, 11 बजने वाले हैं। आधा दिन कैसे, आधा दिन उन लोगों के लिए नहीं है जो उठते ही 11 बजे। तो भाई देखिए, मैं तो 7 बजे आती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा आधा दिन हो गया है। कल फिर से आऊंगी, बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारी अपडेट्स लेकर आऊंगी, और क्या कुछ हो रहा है आपके अपने शहर में आपको ये भी बताऊंगी। तो भाई फिलहाल मुझे दीजिए ना इजाजत। जब तक इजाजत नहीं देंगे तब तक मैं कैसे जाऊंगी, और आज नहीं जाऊंगी तो कल कैसे आऊंगी। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, फिर मैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे कोई मैसेज आज देके जाएगी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और आज का जो कोट है ना, वो कुछ ऐसा है, स्ट्रॉन्ग वुमेन नोज शी हैव स्ट्रेंथ इनफ फॉर द जर्नी, बट द वुमेन हु हैव स्ट्रेंथ नोज इट इज द जर्नी वेयर शी विल बी स्ट्रॉन्ग। मतलब ये दोनों बातें सिमिलर ही हैं, बट कहने का तरीका कुछ ऐसा है कि सामने वाले को अब कौन सा तरीके पे आके वो क्लिक कर जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक वुमेन को ये तो पता है कि वो बहुत इनफ स्ट्रांग है ये जर्नी तय करने के लिए, बट जब वो वुमेन स्ट्रेंथ वाइज उतनी स्ट्रांग है तो उससे मालूम है ये जर्नी उसके लिए कितनी आसान है। तो ये जो एक भाव है ना इस चीज को सामने लाने का कि एक नारी जो है वो अपने आप में बहुत सशक्त है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बट वो पता नहीं क्यों अपने आप को हर बार डिग्रेड करती हैं या अपने आप को कमजोर समझती है। आप कांधे से कांधा मिला के चलने वाली इस विश्व की वो महिलाएं हैं जो शायद एक टाइम पे पुरुष को भी पीछे छोड़ दे उनकी क्रिएटिविटी में, उनके स्किल्स में और लाइफ ग्रोथ में और बहुत सारी चीजों में। तो आपको अपने आप को कभी भी ऐसे एक लेवल नीचे नहीं देखना चाहिए, हमेशा खुद को ऊपर देखो ताकि सामने वाला जब आपसे बात करे ना तो उसे भी नजरें उठा के बात करनी पड़े। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: फरीदाबाद केम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

वुमेन इन स्पॉटलाइट में आज एक ऐसी वुमेन है जिसके बारे में मैं क्या बात करूं। मेरे को लग रहा है ये एक साथ दोनों स्पॉटलाइट में आएंगी, कि जिन्होंने ये लिंक्डइन पे उनको पोस्ट किया है वो स्पॉटलाइट पे आएंगी, कि जिनके लिंक्डइन पे ये पोस्ट हुआ है वो स्पॉटलाइट पे आएंगी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और इतना कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक मदर का जो प्यार है ना वो इस पोस्ट में बखूबी दिखाई दे रहा है, बट जिसके पास ये पहुंची उन्होंने लिंक्डइन पर डाल के बोला मैं इसका क्या जवाब दूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। दरअसल एक मोहतरमा है, उनके लिंक्डइन पे एक मदर ने आके ये पोस्ट किया है कि मतलब शेयर किया है कि मेरा एक बेटा है जिसने बायोलॉजी में बहुत अच्छा किया हुआ है, बायोटेक में बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, 1997 में वो बॉर्न हुआ है और मैं उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। और ये आके उन्होंने उस लड़की के प्रोफाइल पे मैसेज किया। वो लड़की कंफ्यूज है, ये अभी तक शादी.com चल रहा था, प्रपोजल घर वाले लाते थे, ये पहली बार हो रहा है मेरे लिंक्डइन पे मेरे लिए आ रहा है कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे है, अगर तुम शादी करना चाह रही हो। अब लिंक्डइन को आप इस चीज का जरिया ना बनाइए ना कि वहां आप शादी.com या matrimonial.com खोल के बैठ जाएं कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता है, अगर आप हाँ बोलें 1997 में हुआ है, इस साल वो लगभग 29 ईयर्स का हो जाएगा, आगे आप बताइए। इतना कैलकुलेशन मेरे माइंड में इसलिए क्योंकि मेरा सेम ईयर है और मेरी मम्मी इतना तो नहीं करेगी, बट हाँ आते जाते वो भी मेरे को ऐसा बोल देती है, अरे शादी ये क्या तरीका था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो उसकी बिजनेस प्रोफाइल बना रही है वहां पर, वो अपनी कि मैं अपने करियर में अगला ये करूंगी, ये प्रोफाइल मैं शेयर करूँ करियर को, बीच में टंग से मैसेज बजता है लिंक्डइन पे, क्या अरे मेरे बेटे शादी करोगी, अरे भाई साहब। ऐसी चीजें स्पॉटलाइट में आती ना तो देख के अच्छा लगता है। वो माँ की एक तो ममता कितनी मासूम है, उन्हें यह नहीं पता है कहाँ पूछना होता है कहाँ नहीं पूछना होता है। अच्छा हुआ आपको एक फॉर्मल मेल करके नहीं भेजा गया है यहाँ पर। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।

तक सोचने लगते हो ये मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: ये लाइन आपने सुनी है,
1: छोटा बच्चा जान के मुझको आंख ना दिखाना रे, डुब डुब डब डब। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये बात हमारी जो आज की शी हैव चेंज द वर्ल्ड में छोटी सी नन्नी सी बिटिया है, उसने करके दिखा दी है। शी हैव चेंज द वर्ल्ड तो नहीं बोलूंगा, शी इज स्टिल चेंजिंग द मेंटालिटी एंड वर्ल्ड, क्योंकि ये मात्र 4 साल की हैं और एक ऐसी मराठी फिल्म इन्होंने करी है जिसका नाम है नाल 2, और उसमें इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि इनको सबसे छोटे यानी कि

आर्टिस्ट इतनी कम उम्र में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। त्रिशा नाम है इनका और त्रिशा को ये अवार्ड की जो उपलब्धि है ना, ये उसकी कला के लिए मिली है। और कला जो है ना, वो मेरे को लगता है बाकी सारी चीजों से हमेशा अव्वल होती है, मतलब ऊपर होती है, और एज मैटर नहीं करता है। यहां पर उनकी मासूमियत ने, उनके कॉन्फिडेंस ने, उनकी प्रेजेंस ने स्क्रीन पे सबका दिल ऐसे छू लिया कि उनको ये अवार्ड मिलना ही मिलना था, ये उनसे दूर जा ही नहीं सकता था। और इस वक्त जो पूरे देशवासी हैं, ये गर्व फील कर रहे होंगे, 4 साल की छोटी वो लड़की, उसने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है जो शायद इंडिया में किसी ने इमेजिन नहीं करा होगा। इतना बड़ा अवार्ड इतनी कम उम्र में तो नहीं करा होगा। और एज अ आरजे, एज अ रेडियो प्रेजेंटर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी कहानियां मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर पाए, उन्हें भी ये किस्से, ये कहानियां बता पाए, और उन्हें भी बोले नहीं, तुम्हें भी इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, बस उसे करने की लगन छोटी या बड़ी होती है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, तो महिलाओं के थोड़े से हक की बात और कर ले और महिला को थोड़ा सा और उनके ही राइट्स के बारे में नॉलेज दे ले। 89.6 रेडियो महारानी और तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और आज जो मैं राइट की बात करने जा रहा हूँ, हर महिला को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है। राइट टू पे इक्वल। अब यहाँ पर आप जब डेट पे जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको इक्वल पे करना, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राइट टू पे इक्वल से होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जितनी सैलरी आपके उस लेवल पे एक मेल एम्प्लॉय को मिल रही है उतनी ही आपको भी मिलनी चाहिए। पे इक्वल यहां से हम रिलेट कर रहे हैं, जितना काम आप कर रहे हो अगर सेम एक कोई मेल कर रहा है, जितनी जिम्मेदारी आपके पास है उतनी ही एक मेल एम्प्लॉय के पास है, और जिस लेवल पे आप हो और उसी लेवल पे वो मेल एम्प्लॉय है, मतलब सब इक्वल होगा तो सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं, अब ये हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो किसी कंपनी में और आप अभी आए हो तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचो और आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजों आपको मैच करनी है। ये नहीं कि आप भी डायरेक्टर पोस्ट पे गए, वो भी डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो आप कहो नहीं मुझे इक्वल सैलरी चाहिए। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है, बट आप भी उतने ही एक्सपीरियंस हो, 6 साल, वो भी 6 साल एक्सपीरियंस और सेम पोस्ट पे हो, देन यू कैन फाइट फॉर योर राइट कि मुझे भी इतना पे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। तो राइट टू पे इक्वल का सिंपल ये मतलब है। और बाकी अगर आप अच्छा कमा रही हैं तो डेट पे जाइए तो वहां भी पे इक्वल कर लिया करिए, थोड़ा मेन का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बी अ स्मार्ट वुमेन वाला एक कदम उठा लीजिएगा और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिएगा।

तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल इवनिंग।

एक आदमी को ना बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें वो छोटी छोटी चीजें चाहिए और वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाने वाले हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अब आप बोलोगे ना वो छोटी छोटी चीजें क्या है। देखिए वो छोटी छोटी चीजें ये हैं कि जैसे किसी इंसान को घड़ी पसंद है तो नॉट बहुत महंगी, बट आप उसे कोई नॉर्मल घड़ी भी ला के दे दोगे ना जब उसका कोई स्पेशल डे आ रहा हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा आपसे, तो ये एक छोटी वाली खुशी। कई लोग मेंस होते हैं जिन्हें डीओ बहुत पसंद होता है, डीओ का अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो आप वो एक छोटी डीओ की बॉटल भी उनको ला के दे देंगे, नॉट सो एक्सपेंसिव, मैं एक्सपेंसिव डीओस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। शूज का कलेक्शन, ऐसे मेंस की बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बहुत सारे मेंस होते हैं जिन्हें अपने जूतों से बहुत प्यार होता है, तो उनकी जूते जो होते हैं ना उनसे अपना आप डिस्टेंस बना के रखिए। ये नहीं कि जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, भाई ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत हर्ट कई बार कर जाती हैं। तो अगर आपको पता है आपके मेन को क्या पसंद है, तो पहले तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक मेन के बारे में, तो जो उसे पसंद है उसकी उस चीज का अगर आप टेक केयर कर लोगे ना तो मेन से बढ़िया इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी उस चीज की केयर कर लो जो उसे सबसे पसंद है, बस दैट्स इट। अगर उसे खाना पसंद है तो उसे अच्छा खिला दो तो वो सबसे खुश रहने वाला। तो आपको अब फिगर आउट करना है आपका जो मेन है उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, और उसके लिए वही हर थोड़े थोड़े टाइम बात करते रहो तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी लव लाइफ है वो बेटर चलती रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: 101.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आज की जो नारी हैं ये भी मल्टीटास्कर हैं और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: हाय तुषार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
0: बिल्कुल, और ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आप बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, मैं उसके बारे में और वहां से ही जर्नी को स्टार्ट करना चाहूंगा। एक लॉकडाउन से पहले, एक लॉकडाउन से बाद, ये दो फेसेस वाली जो स्टोरी है। सबसे पहले तो पहले वाले चलते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री से आप एसोसिएटेड हैं, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवल गाइड करना प्लस उनकी जर्नी प्लान करके देना, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि ऐसा कुछ करते हैं?
1: देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री से ही मैंने अपना करियर शुरू किया। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री ही थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली मेरे लिए एक शॉक था क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन पे ही अफेक्ट आया था। बंद हो गई थी, सारी कंपनीज बंद हो गई, मेरे लिए भी एक बहुत शॉकिंग सिचुएशन थी कि ये क्या हो गया है। बट मैं बहुत नेगेटिव नहीं हुई, मैंने कुछ चीजें पॉजिटिव वे में भी किया। मैं फिटनेस से बहुत, मेरा पैशन है फिटनेस, तो मैंने और मेरे अंदर एक ये चीज है कि जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ ना तो मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं एरोबिक्स करती हूँ और इससे मेरा ना स्ट्रेस कम हो जाता है। जब मैं अब जॉब तो थी नहीं, वर्कआउट मैं कर रही थी, तो मेरे माइंड में कुछ चीजें आई कि व्हाई नॉट फिटनेस, आई कैन गो विथ फिटनेस ऑल्सो। तो फिटनेस में मैंने सर्टिफिकेशन किया, मैंने CPT ट्रेनिंग ली जिसमें सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद मैंने एरोबिक्स ज्वाइन करा, एरोबिक्स की सर्टिफिकेशन की। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी सिचुएशन जब नॉर्मल होने लगी तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट किया एंड देन जिम में जाके बात की लोगों से, क्लासेस की बात की। क्लासेस में जब मैंने बात की तो वहाँ पे जो लेडीज मेरी क्लासेस में होती थी, क्लासेस में उनको फिटनेस से रिलेटेड बातें करना शुरू की। तो मैंने अपनी जो पैशन था वो मैंने अपना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और अपनी जर्नी यहीं से शुरू कर दी फिटनेस को लेके।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्ले सेल प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: 99.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये दो अलग, एक ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट और फिटनेस इज डिफरेंट, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं शायद हम वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ ये दोनों चीजों का बैलेंस आप कैसे करके चल रहे हो कि वो भी मैनेज करना और प्लस फिटनेस भी मैनेज करना।
1: देखिए इसमें मैनेज नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चल रहे हैं। कई बार होता है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अपने आप को भूल जाते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। कि ऑटोमेटिकली ये होता है कि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत सोचना।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
2: मुझ में है स्मैश, मुझ में है स्मैश, मुझ में है स्मैश, मुझ में है स्मैश।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर।

0: भरत से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

0: जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर है। मैंने थोड़ा सा जब आपके बारे में रिसर्च करा या आपके बारे में पढ़ा, आप बीइंग अ मदर, आप मदर हैं और उसके बाद आप ट्रैवल इंडस्ट्री प्लस फिटनेस, तो कितना ये मुश्किल हो जाता है कि फैमिली के साथ ये दोनों चीजें भी बैलेंस करनी है। ये आपका स्टार्टअप है, इसे भी टाइम देना है, प्लस फैमिली या जो चाइल्ड है उन्हें भी उतना टाइम देना है।
2: देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था, जब सिचुएशन नॉर्मल हुई मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मैं अपना फिटनेस में शुरू कर दूंगी तो मैं वापस ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊंगी ये मैंने सोचा था, क्योंकि वो मेरा करियर है एंड मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से की थी। अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो मैंने वापस से ट्राई करना शुरू कर दिया ट्रैवल इंडस्ट्री में। मैंने कंपनी ज्वाइन की बाय द नेम ऑफ TNE, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम इसमें कस्टमाइज करते हैं पैकेजेस एंड हम ग्रुप ट्रैवल्स भी कराते हैं। इधर मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लेके गई, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फैमिली, और मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को आप देखो लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी।
1: 100% मैं यहीं पर, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल उसमें, तो आपने एक्सप्लोर किया होगा, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं या लिस्ट में है कि यहाँ एक बार और एक्सप्लोर करने जाना है?
2: मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा तो नहीं करती क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑपरेशंस देखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भेजती है, इवेंट्स मैनेज करने के लिए भेजती है। बट हाँ, मैं अभी एक ग्रुप लेके गई थी केरला फॉर 100 पीपल, और अपना जो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ बताने गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ, मेरे को अगर ट्रैवल करना है तो मुझे यूरोप ट्रैवल करना है एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल पैरिस एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल जापान ऑल्सो, बिकॉज मेरी बड़ी डॉटर जो है शी इज फॉन्ड ऑफ जापान एंड कोरिया।
1: Okay.
2: तो हाँ, ऑब्वियसली यहाँ जाना चाहूंगी मैं।
1: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। You don't wanna settle your move, it's 'cause I'm beautiful.

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: वो जेल से छुड़वा कर अपने गाँव
1: आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है?
0: मेरे पास रेडियो महारानी है।
2: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: गलियां।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल है भाई आप सबके। सुबह से अपनी अपनी रेस में लगे हुए होंगे ना, किसी का काम पेंडिंग है, किसी की मीटिंग्स चल रही हैं और किसी का दिमाग बस ये कैलकुलेट कर रहा है कि भाई आज घर जाने में कितने घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है ना, लंच हो ही गया है, आफ्टरनून चल रहा है, तो बस इसी बीच थोड़ी देर के लिए अपना मूड हल्का करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ी फिल्मी बातें करते हैं और एंटरटेनमेंट का डोज लेते हैं। मैं हूं पलक और अगले दो घंटे आपके साथ होंगे बिल्कुल फिल्मी फ्लेवर वाले ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, इंजॉय कीजिए ये गाना एंड सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।
3: Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेट्स एंड प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अगर आपको रियलिटी शोज में ड्रामा, सीक्रेट और थोड़ा सा भाई ये क्या हो रहा है वाला एंटरटेनमेंट पसंद है ना, तो ये अपडेट आपके नाम का है भाई। लॉकअप एक बार फिर अपनी जेल का दरवाजा खोलने के लिए रेडी है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली सीजन 2 अनाउंस कर दिया है। हाँ, फिर से नए कंटेस्टेंट्स, नए सीक्रेट और नए कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ सेलिब्रिटीज जेल के अंदर जाने वाले हैं। पहले सीजन में श्रेया कालरा विनर बनी थी और शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर अप रही थी। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फराह और रितेश देशमुख एक बार फिर जेलर डुओ के तौर पर वापस आ रहे हैं। मेकर्स ने अभी रिलीज डेट या कंटेस्टेंट्स की लिस्ट रिवील नहीं की है, बस इतना प्रॉमिस किया है कि इस सीजन में स्टोरीज भी नहीं होंगी, पर्सनालिटीज भी नहीं होंगी और सरप्राइजेस भी नहीं होंगे। तो अब देखना ये है भाई कि इस बार लॉकअप में कौन एंट्री लेगा और किसकी लाइफ के सीक्रेट्स सबसे पहले बाहर आएंगे। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अगर आपको वो स्टोरीज पसंद है जहाँ एक छोटा सा सवाल पूछना ही पूरी कहानी को उल्टा पुल्टा कर देता है तो ये अपकमिंग थ्रिलर इंटरेस्टिंग हो सकती है भाई। परिणीति चोपड़ा और देवेन भोजानी की फिल्म रिपोर्टिंग लाइफ का ट्रेलर रिलीज हो गया है और नाम से ही समझ आ रहा है कि इस बार इन्वेस्टिगेशन कैमरा के सामने भी होगी और कैमरा के पीछे भी। फिल्म में परिणीति एक रिपोर्टर और देवेन भोजानी कैमरामैन के रोल में है। दोनों ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन इलीगल सैंड माइनिंग के एक बड़े और डेंजरस नेटवर्क तक पहुंच जाती है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सवाल उन लोगों से पूछे जाने लगते हैं जिनसे सवाल पूछना शायद सेफ नहीं था। ट्रेलर में हर आंसर के साथ एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है और रिपोर्टर कैमरामैन की ये जोड़ी सच तक पहुंचने के लिए कितना रिस्क लेती है, वही फिल्म का मेन सस्पेंस है। परिणीति के साथ अनमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे और ये रिपोर्टिंग लाइव 9 अक्टूबर को यानी कि कल नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। तो स्टोरी के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बस देखना ये है कि सच सामने आने तक कौन कौन सेफ रहता है और कौन नहीं। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: क्या आपकी प्लेलिस्ट में एक ऐसी आवाज है जिसे सुनते ही 90s का पूरा एरा आंखों के सामने आ जाता है? मैं बात कर रही हूँ कुमार सानू जी की। 90s में इनकी आवाज लिटरली हर जगह थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी मिलेनियल्स के साथ साथ जेन जी भी उनके गाने बड़े मजे से सुनते हैं। लेकिन कुमार सानू से जुड़ी एक बात सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि ये पॉसिबल कैसे है भाई। कहा जाता है कि 1993 में उन्होंने सिर्फ एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, और ये वही साल था जब उनके बाजीगर ये काली काली आंखें, तेरे दर पर सनम जैसे गाने हर जगह सुनाई दे रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुमार सानू ने लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत कर भी रिकॉर्ड बनाया था। मतलब एक टाइम था जब बॉलीवुड में रोमांटिक सॉन्ग हो और कुमार सानू की आवाज ना हो तो प्लेलिस्ट थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती थी। तो अगर आपको कभी भी 90s वाली फीलिंग चाहिए हो, बस एक कुमार सानू जी का सॉन्ग लगा देना भाई, मेमोरीज ऑटोमेटिकली रिवाइंड हो जाएंगी। अब मैंने गानों की बात कर दी है तो वक्त गानों का हो चुका है। एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर with Bollywood never stops,
5: with Bollywood never stops,
6: picture perfect music loaded।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कभी कभी किसी एक्टर के चले जाने की खबर सिर्फ एक सेलिब्रिटी का लॉस नहीं होती, बल्कि सिनेमा की पूरी जनरेशन की यादों को एक पल में रोक देती है। आज 8th of October है और आज ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने 75 ईयर की एज में दुनिया को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पाटेकर गोवा में अपने घर पर बेहोश मिले थे। उन्हें तुरंत ही मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने करीब 45 मिनट तक CPR देकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन नाना जी की कहानी सिर्फ उनके आखिरी पलों तक नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर तक है जहां स्ट्रगल भी था, आर्मी का एक्सपीरियंस भी था और सिनेमा में ऐसी परफॉर्मेंसेस भी जो हमेशा याद रहेंगी। 1999 में वो इंडियन आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम के साथ LOC पर भी रहे और बाद में सिनेमा में लौटकर अपनी एक्टिंग से एक अलग मुकाम बनाया। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी उनके नाम रहे। नाना पाटेकर जी एक एक्टर नहीं, बल्कि अपने आप में ही एक पूरा एरा थे और नाना पाटेकर के इसी सफर, उनकी जिंदगी और उनकी यादगार परफॉर्मेंसेस पर आगे भी इसी शो में बात करेंगे। बने रहिए रेडियो महारानी के साथ। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

अच्छा, कुछ लोगों की कहानी स्क्रीन से शुरू नहीं होती बल्कि उनकी कहानी स्ट्रगल से शुरू होती है। नाना पाटेकर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। आज हम उन्हें एक बड़े एक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। माँ को तकलीफ में देखकर नाना ने फैमिली का हाथ बटाने का फैसला किया। रोज 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, 8 किलोमीटर वापस आते थे, यानी 16 किलोमीटर का सफर, और बदले में मिलते थे सिर्फ 35 रुपए। काम था फिल्म्स के पोस्टर पेंट करना, और शायद इसी स्ट्रगल ने उनके अंदर वो सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ पैदा की जो बाद में उनकी पर्सनालिटी की पहचान बन गई। एक और बात जो दिल को छू जाती है, नाना को गोल्ड का शौक अपनी अम्मा की वजह से था। उन्होंने बताया था कि वो अपनी फिल्म्स की कमाई से माँ के लिए गोल्ड खरीद कर ले जाया करते थे। वो कहते हैं ना, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसकी कहानी में माँ का एक हिस्सा हमेशा रहता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का, फिर लौटूंगी इसी जगह। मैं हूँ पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर।

0: फ्लेवर।
1: कुछ आवाजें सिर्फ डायलॉग नहीं बोलती, वो डायलॉग को यादगार बना देती हैं। नाना पाटेकर की आवाज और उनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल कुछ ऐसा ही था। स्क्रीन पर वो डायलॉग बोलते नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे सामने खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं। क्रांतिवीर का आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, यशवंत का 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, तिरंगा का मराठा मरता है या मारता है, और फिर वेलकम का वो डायलॉग कि साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, बल्कि ये वो मोमेंट्स हैं जो सिनेमा देखने वाली जनरेशंस के साथ रह गए। और नाना जी की खासियत ये थी कि उनकी डिलीवरी में एक्टिंग कम और असली जिंदगी की बातचीत ज्यादा महसूस होती थी। शायद इसीलिए उनका एक एक डायलॉग थिएटर से निकलकर लोगों की जुबान तक पहुंच गया। नाना पाटेकर जी को रेडियो महारानी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और देखते ही देखते हमारे इस फिल्मी आफ्टरनून को शटर डाउन करने का वक्त हो चुका है। आज थोड़ी बॉलीवुड गॉसिप हुई, कुछ नए अपडेट्स भी मिले। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूं, कल फिर मिलूंगी इसी जगह इसी टाइम और एक नए फिल्मी डोज के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई भरोसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

आज की सुबह सुबह जैसी नहीं थी, क्योंकि सुबह उठते ही वो खबर मिली जिसको सुनने के बाद शायद बहुत से लोगों को झटका लगा कि ये क्या हुआ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ। एंड जैसे ही आज सुबह ये खबर मिली कि नाना पाटेकर अब हमारे साथ नहीं रहे, उस टाइम एकदम से मन में एक ही चीज़ आई, वेट व्हाट, मतलब आज 8 अक्टूबर 2026 उनके निधन की खबर जैसी सामने आई तो कुछ चीज़ें सामने ना ही आती तो ज़्यादा बेटर था। स्वागत है आप सभी का, और अगले 4 घंटे के लिए मैं आ चुका हूँ, बट मैं ये बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज से 4 दिन पहले, मात्र 4 दिन पहले नाना पाटेकर एक सभा में जाते हैं, वहाँ पर जाके भाषण देते हैं कि सबको इस दुनिया से जाना है, कल को मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, और जस्ट 4 दिन बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने ये भाषण दिया था, और आज 8 अक्टूबर की सुबह उनको हार्ट अटैक आता है और उसके बाद वो हमारे बीच अब नहीं है। एंड इसके बाद से ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड पता है आपको उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम है विश्वनाथ पाटेकर। एंड नाना एक्चुअली उनका स्क्रीन नेम नहीं था, बल्कि बचपन से चला आ रहा था उनका नाम, ये जैसे बचपन में लोग बुलाते थे नाना नाना, तो इसलिए उनका नाम नाना पाटेकर ही रह गया। वैसे उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत सारी बातचीत करेंगे नाना पाटेकर साहब के बारे में, और इसी के साथ साथ आज स्टूडियो में मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे पर। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अगर आपके पास भी कोई यादें हैं नाना पाटेकर को लेकर तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर सुनिए ये गाना, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

नाना पाटेकर, एक ऐसा नाम जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत टाइम से चला आ रहा है और उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्म्स भी दी हम लोगों को, लेकिन उनका असली नाम नाना नहीं था। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और आज सुबह सुबह जैसी नहीं थी, वो खबर मिलते ही सब लोग बिल्कुल एकदम से शॉक में थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी से चार दिन पहले उन्होंने एक जगह भाषण भी दिया था और बहुत वायरल भी हो रहे थे अभी बीच में इन दिनों। और इसी बीच एक और चीज़ सामने आई कि उनका असली नाम नाना नहीं, उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है और बचपन से उनको नाना बुलाते आए थे तो इसलिए उनका नाम यही चल रहा था। और फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया था। और पता आपको, एक टाइम था जब नाना पाटेकर मूवी पोस्टर्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट करते थे, और मतलब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी है कि उनको जॉब अर्निंग से सिर्फ 35 रुपये पर डे मिलते थे। और फिर वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक ट्रेंड आर्टिस्ट भी थे, और उन्होंने जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से भी पढ़ाई की थी। इंडियन आर्मी का भी उनका कनेक्शन है। आप सभी को मालूम होगा 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तो प्रहार के लिए उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और बाद में टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े। और 1999 में कारगिल वॉर के दौरान सोल्जर्स के साथ फ्रंट लाइन एरियाज में भी उन्होंने बहुत वक्त बिताया था। और एक्चुअली में उन्होंने 60 दिन तक कारगिल वॉर के टाइम पूरा का पूरा साथ दिया था सोल्जर्स का। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फिल्म फेयर का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है उनके नाम। नाना पाटेकर ने फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट विलन तीनों कैटेगरीज में अवार्ड जीता है। उनके करियर का उनके करियर में काफ़ी सारी चीज़ें जो अनयूजुअल है। देखो, 3 नेशनल अवार्ड्स परिंदा, क्रांतिवीर और अग्नि साक्षी के लिए। सोचिए, इतनी सारी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड्स मिलना। और फिर उसके बाद एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है नाना पाटेकर के बारे में जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, कि वो मुंबई पुलिस के लिए एक स्केच आर्टिस्ट भी रहे। मतलब वो मुंबई पुलिस के लिए सस्पेक्ट्स के स्केचेस बनाने का भी काम कर चुके हैं। और वेलकम वाला उदय शेट्टी किसको याद नहीं होगा, मतलब उनकी वर्सेटाइलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ था वेलकम मूवी में, जब वो उदय शेट्टी के कॉमिक रोल से सबके सामने आए थे, सब लोगों के बीच में वो पॉपुलर हो गए थे कि क्या नाना पाटेकर भी ऐसे रोल्स कर सकते हैं। तो उनसे जुड़ी बातें अगर हम लोग अभी करने बैठे शायद सुबह से रात हो जाएगी। रात तो अभी वैसे भी होने वाली थोड़ी देर में, बट अभी फिलहाल आप सभी के लिए वक्त हो चुका है गाना चलाने का। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाइस डोंट यू थिंक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज सुबह सुबह मैं निकला दिल्ली की तरफ और फिर मैं वापस अपने दिन तक ऑफिस के लिए आने के लिए जैसे ही मैं सूरज कुंड रोड पर चढ़ा तो सूरज कुंड रोड से फरीदाबाद की तरफ आते वक्त बहुत ट्रैफिक कम था, बट जैसे जैसे मैं ग्रीन फील्ड के पास पहुँचा और ग्रीन फील्ड मैंने क्रॉस किया एंड मैं देखता हूँ कि मानव रचना की तरफ से आते हुआ ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि अनंतपुर चौक से लेकर मानव रचना तक पूरी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी एंड आई डोंट नो व्हाई। देखो इतना ज़्यादा रश मैंने उस आर में कभी नहीं देखा। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि शाम के वक्त ऐसा रश होना फिर भी एक बार को एक्सेप्टेबल है, बट दिन के टाइम, अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि स्कूल की छुट्टी हुई है, कॉलेजेस की छुट्टी हुई है, इस वजह से भी हो सकता है जाम लग रहा है, बट नहीं, उस जगह पर इतना जाम दिन के टाइम तो मैंने कभी नहीं देखा, बट इस बार देख लिया। और इसके अलावा अगर हम लोग फरीदाबाद में और भी जगहों की बात करें तो गुड़गांव फरीदाबाद रोड जो कि सैनिक कॉलोनी में आके मिलती है वहाँ पर भी शाम के वक्त ट्रैफिक यूजुअल से ज़्यादा हैवी हो चुका है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फरीदाबाद नेशनल हाईवे यानी कि मथुरा रोड पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम आजकल देखने को मिल रहा है और लोग इसके पीछे का कारण बता रहे हैं अपकमिंग क्या है, हाँ, दशहरा और दीपावली, तो मतलब फेस्टिव सीजन इज ऑन, तो इसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि ट्रैफिक अब कम कब होगा, बट अभी वक्त हो चुका है आप सभी के लिए गाना चलाने का। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी जी 9.6 पर गौरव में आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

फेस्टिव सीजन इज हियर और इसी के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग तो शुरू हो चुकी है, बट मेरे कुछ दोस्त अभी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बस श्राद्ध खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम लोग भी अपनी शॉपिंग शुरू कर देंगे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सभी का दिल से स्वागत है। बहुत देर से बातें कर रहे थे हम लोग और फेस्टिव सीजन है तो रामलीला भी शुरू हो चुकी है काफी सारी जगहों पर, और काफी सारी जगहों पर 10 तारीख से शुरू होने जा रही है, यानी कि शनिवार से श्राद्ध ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि हम लोगों को शॉपिंग करनी है, बट श्राद्ध जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो देखो रामलीला इस बार फरीदाबाद में कुछ ग्रैंड लेवल पर होने वाली है, जैसे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में होती है ना, सेम टू सेम उसी के लेवल पे ग्रीन फील्ड, यानी कि ग्रीन फील्ड फरीदाबाद सेक्टर 43 जैसे हम लोग कहते हैं, एनएचपीसी से आते हैं ना जब ग्रीन फील्ड, ये हो तो ग्रीन फील्ड कॉलोनी में इस बार रामलीला बहुत ही बड़े तर्ज पर होने वाली है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी कम्युनिटीज़ हैं जो फरीदाबाद में रहती है। अगर हम लोग बात करें गढ़वाल और कुमाऊं, दो सांस्कृतिक मंडल है यहाँ पर, और उसके अलावा जाट भवन भी है, और उसके अलावा जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जैसे महाराष्ट्र कम्युनिटी भी है यहाँ पर, तो वो सब लोग मिलके भी कोई ना कोई

एक्टिविटी करते हैं। एंड इसके अलावा दुर्गा पूजा के लिए सेलिब्रेशंस शुरू होने वाले बस कुछ ही दिनों में, और लास्ट के जो चार दिन होते हैं वो तो अमेजिंग होते हैं, वो देखने लायक होते हैं। तो दुर्गा पूजा में भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइएगा। गरबा डांडिया की नाइट्स भी शुरू होने वाली है बस कल ही से ही, तो गरबा डांडिया सबके लिए पूरा फरीदाबाद तैयार है। तो आप लोग तैयार है कि नहीं? नहीं है तैयार तो तैयार हो जाइए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने यूं ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
0: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनना सुनना,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

क्या आप लोगों को पता है रामायण मूवी जो आने वाली है उसकी रिलीज डेट बदल दी गई है और अब रामायण अक्टूबर में रिलीज नहीं होने वाली और ये सिर्फ पार्ट वन है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर स्वागत है आप सभी का। आपको पता है अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी मूवी रामायण और इसका पार्ट वन ही है ये वैसे तो, और इसका पार्ट टू बाद में आएगा। जैसे बहुत सारी मूवीज का पार्ट टू अभी तक आना बाकी है। अगर मैं बात करूँ रणबीर कपूर की ही मूवीज की तो ब्रह्मास्त्र का पार्ट टू अभी तक नहीं आया 2022 से, एनिमल का पार्ट टू अभी तक नहीं आया 2023 से, और अब तो ये रामायण है। रामायण मूवी का पार्ट वन इस साल रिलीज होने वाला था, तारीख बदल कर 5 नवंबर कर दी गई है, तो इसका वेट तो करना पड़ेगा। और बता दूं आपको, फिल्म के जो पेड प्रीव्यू मिलते हैं ना वो 4 नवंबर को होंगे, तो 4 नवंबर को आप लोग देखने जा सकते हैं। पेड प्रीव्यू होगा ये एक दिन पहले वाला, और फिर उसके बाद ऑफिशियल वे में जब रिलीज होगी वो है 5 नवंबर को। और आप सभी को पता है दीपावली 8 नवंबर की है, तो इस बार इन्होंने सोचा, जो प्रोड्यूसर है निमित मल्होत्रा, उन्होंने सोचा कि दिवाली पर ही फिल्म रिलीज करेंगे। तो पहले सोच रहे थे कि अक्टूबर में कर देंगे, दिवाली तक रंग बना रहेगा, बट अब सोचा है कि नवंबर में ही करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ये जो रामायण मूवी का जो सेट है जो मुंबई में लगा हुआ है वहाँ पर भी आग लग गई थी, उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ चेंज कर दिया हो, बट ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है तो हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। और अभी आप लोग फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। और हाँ, एक और चीज़, आज मेरे साथ

0: आज शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Tesha.
1: क्या आप लोगों ने कभी भी लाइफ में अपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप लोग किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा खुश भी हैं उस नए इंसान से बात करके?
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
1: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और सपने में नए नए लोगों से बात करने का ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है, मतलब अननोन लोगों से बात कर रहे हो तो इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग भी होता है कि हो सकता है कि आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों पर मतलब आप विचार कर रहे हो जो आपके अंदर डिजायर

है, हिडन डिजायर्स है। हो सकता है आपकी सोच बदल रही है, कई बार ऐसा होता है कि सपने में ना नए नए लोग होते हैं, उनसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपका दिमाग किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी नए स्किल या फिर क्रिएटिव आइडियाज पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल तो हो गया, बट इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है। तो नया दोस्त या फिर नया रास्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप सपने में किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हैं, खुशी खुशी बात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि जल्दी आपकी जीवन में कोई नया दोस्त आ सकता है, नया पार्टनर आने वाला है या फिर कोई नया रास्ता खुलने वाला है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप सपने में अनजान लोगों से बात करते हुए खुद को देखते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रियल लाइफ में आप थोड़े अलग थलग, मतलब आप आइसोलेटेड महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं बिल्कुल अलोन हो गया हूँ, लोनली वैसे टाइप का। तो आपका सोशल सर्कल थोड़ा सीमित हो सकता है वक्त में। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लाइफ में जितने भी लोग आए हमारी वो अच्छे हों, क्वालिटी लोग हों, गंदे लोगों से हमें दूर रहना है। बस इतना हम लोग सोचेंगे और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाएंगे। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए चला रहा हूँ कुछ गाने, और उन्हीं में से ये गाना रेडियो महारानी पर गौरव हूँ मैं।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।

0: भाई।
1: रेडियो का गौरव आरजे गौरव,
2: रेडियो महारानी से मैं हूँ आरजे गौरव और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम शो चल रहा है 89.6। एंड आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आस्था शर्मा जी, जो कि वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे पर मेरे साथ बात करने के लिए भी हैं। और वैसे आप सभी को बता दूँ, शी इज़ अ सिंगर राइट नाउ। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब मन में आया कि हमें सिंगिंग करनी चाहिए?
3: मेरे को बचपन से शौक था गाने का।
2: अच्छा, गाने का बचपन से शौक था, टीवी देखते देखते या फिर गाने सुनते सुनते?
3: एक्चुअली मैं ऋचा शर्मा जी, सोनू निगम जी की भेंटें सुनती थी
2: जी,
3: तब से मुझे शौक पड़ा और मैं बहुत ज्यादा सुनती थी।
2: तो जब आप गाती हैं तो आपको कैसा फील होता है?
3: जब मैं गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच कहूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि गाना ही मुझे गा रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ जाता है और मुझे कुछ मतलब जब मैं गा रही होती तो मुझे उस समय कोई नहीं दिखता, लगता सिर्फ गाना है और मैं हूँ।
2: वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं जब गाता हूँ तो फिर उसके बाद घर वाले मना कर देते हैं। अच्छा, सिंगिंग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
3: पंजाबी
2: फोक म्यूजिक। तो हमारे सारे लिसनर्स के लिए छोटा सा एक पेशकश हो जाए, छोटी सी, बिल्कुल 2 लाइनर्स या 4 लाइनर्स।
3: ओके,

भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना हो सबनू समझ

अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग एंड इट वाज रियली अमेजिंग. तो रेडियो महारानी 89.6 पर हम लिखते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद वापस आकर आस्था जी से और भी बातें करेंगे. आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6. मैं हूं गौरव आपके साथ.

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है, मिर्जापुर द मूवी। अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी थी
4: आशा इस पंजाब।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आस्था शर्मा जी और वर्ल्ड डिस्लेक्सिया डे पर आज जिनसे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारी पब्लिक के लिए जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको एक बार बता दीजिए डिस्लेक्सिया एग्जैक्टली होता क्या है।
1: डिस्लेक्सिया होता है भूलने की प्रॉब्लम
0: ओके
1: और लिखने का भी
0: थोड़ा सा ज्यादा जैसे तारे जमीन पर मूवी में था
1: आई गेस करेक्ट
0: एम आई राइट। तो आपने इस सब के बावजूद आपने गाना सीखा, आपने गाने खुद से भी क्या लिखे हैं? हाँ या
1: नॉट एट ऑल? नो।
0: ओके ओके ओके। चलिए अगर मैं बोलूं आपसे कि आपने सबसे पहली बार स्टेज पे कब गाया था, पहले तो ये सवाल है।
1: सबसे पहले स्टेज पर कब गाया था? जब मैं 6 ईयर्स की थी, 6 साल की, तब मैंने सबसे पहले गाया था।
0: ओके और कितनी नर्वसनेस थी, कुछ याद है आपको?
1: थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं।
0: मैं तो अभी भी अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ मैं अभी भी नर्वस हो जाता हूँ। चलिए खैर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आस्था शर्मा सिंगर भी हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक गाना गा के हमें सुनाया अभी थोड़ी देर पहले, बट मैं चाहूंगा आस्था जी आप एक और कोई गाना जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है वो हमारी पब्लिक को सुना दीजिए।
1: मैं माहिम ताहिर का सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, झूड़िया।

अमेजिंग अमेजिंग। और मुझे लगता है जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सबके मन में एक ही चीज आ रही होगी कि कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे कानों में शहद ही घुल गया। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच आस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आस्था जी की मदर भी हैं तो उनसे भी बात करेंगे डिस्लेक्सिया के ऊपर मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर चला रहा हूँ एक गाना। मेरा नाम है गौरव एंड आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

अनस्टॉपेबल तो इस टाइम टीम इंडिया है और अनस्टॉपेबल हूँ इस टाइम मैं, क्योंकि लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और तड़कती बड़कती अपडेट। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव हूँ आप सभी के साथ। देखो, टीम इंडिया 10 मैच लगातार जीत चुकी है T20I में और अनस्टॉपेबल बन चुकी है, और इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20I मैच के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड रेडी हो गया है। कप्तान तो एक ही रहने वाले हैं, हमारे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया गया है और 16 लोगों को टीम में शामिल किया गया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी टीम में रहने वाले हैं। बट एक इंसान ऐसा है जिसका नाम मैं चाहता था बहुत टाइम से कि टीम इंडिया में ये इंसान वापसी करे, और वो है none other than दोनों टाइप में बोल देता हूँ, none other than भुवनेश्वर कुमार। और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो रही है, 4 साल बाद हुई है वापसी। और अभी आप सभी को बता दूँ, देखो 22 अक्टूबर को क्राइस्ट चर्च यानी कि न्यूजीलैंड में 5 मैचों की ये सीरीज शुरू होने जा रही है, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और न्यूजीलैंड में आप सभी को पता है कि ODI भी होने वाले हैं, और ODI में फिर से कौन खेलेंगे? रोको। बट इसमें एक और खुशखबरी तो सारी की सारी है, बट एक दुख की बात यह है कि आप लोगों को हार्दिक पांड्या खेलते हुए नहीं दिखने वाले, क्योंकि उनको चोट लगी हुई है, अभी फिट नहीं है, फिटनेस पे अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, तो शायद वो नहीं खेलेंगे। चलिए, अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, और सुनिए इस प्यारे से गाने को।

0: है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

ओ मेरा डोला नहीं आया डोला, ओ मेरी सैलरी नहीं आई सैलरी, ओ मेरे पैसे नहीं आए पैसे, कुछ भी नहीं आया कुछ भी। और सेल जरूर आ गई है सारे प्लेटफॉर्म पर। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? देखो डोला नहीं आया, सैलरी नहीं आई। अब डोला मींस बाइसेप बोल रहा हूँ मैं वो डोला मींस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सैलरी नहीं आई, ठीक है, पैसे जो उधार दिए थे वो नहीं आए, उसके अलावा शेयर मार्केट में भी कुछ चल नहीं रहा है, सेल आ गई टाइम पे। आज रात 12 बजे से सेल शुरू होने जा रही है। कुछ है बकेट लिस्ट में आप लोगों के? कुछ है आपने जो सेव कर रखा है कि खरीदेंगे सेल में खरीदेंगे? मत खरीदना, मतलब पैसे तो आने दो पहले। मुझे लगता है देखो ऐसा मौसम है ये, ऐसा महीना है ये, जब फेस्टिव सीजन सर पर है, पैसे हमारे जेब में नहीं है और खर्चे बेवजह के बढ़ेंगे, इंपल्सिव बाइंग करने वाले हम लोग की ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, कल को तो मिलने नहीं वाली, तो अभी ले लेते हैं इसे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सेल आ गई है, तो आज रात 12 बजे से सेल शुरू हो रही है, खास उन लोगों के लिए जो कि प्राइम मेंबर्स होते हैं, जो कि एक प्लस मेंबर्स होते हैं। दो टाइप की सेल आती है, मतलब दो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे सेल आती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी डाउनलोड कीजिए, किसी से भी आप लोग मतलब कुछ भी ऐप डाउनलोड कीजिए और किसी से भी आप लोग सामान मंगाइए, सब कुछ आपके ऊपर है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, हम लोगों की जेब में पैसे वैसे ही नहीं है और फिर उसके बाद सेल आ जाती है, फिर दुख होता है कि नहीं। चलिए खैर इन सब चीज़ों के बारे में तो बातें होती रहेंगी, मगर अभी रेडियो महारानी 89.6 पर चला रहा हूँ आप सभी के लिए ये गाना आई एम डन बिकॉज आई एम रियली डन यार। सुनिए इस गाने को, एंजॉय कीजिए, रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

क्या आपको मालूम है कि पहाड़ों पर अभी बारिश हो रही है और जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। उसी वजह से दिल्ली NCR में सुबह और शाम को ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 99.6 पर। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ। रेडियो को गौरव कहते हैं, 99.6 सुन रहे हैं आप। एंड फरीदाबाद में अभी मौसम देखो कैसा हो रखा है। अभी थोड़ा थोड़ा स्मॉगी से लग रहा होगा ना आपको, इवनिंग स्मॉगी, नाइट स्मॉगी, अब तो अंधेरा भी हो गया वैसे। बट ये स्मॉग जो चल रहा है ना, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंडक सी आ गई है हवा में, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये हवा में भारीपन में टिके रहते हैं। ठंडी हवाएं भारी होती है इसलिए नीचे रहती हैं वो। और अगर वेदर की बात करें तो आने वाले कुछ 4 दिन तक आप लोगों को ठंडक महसूस और भी ज़्यादा होने वाली है। जैसे कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री रहा, वहीं पर कल मैक्सिमम टेम्परेचर 33 रहेगा, और ऐसे ही ये धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। बट यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अभी एयर क्वालिटी 200 के पार चली गई थी कुछ दिन पहले, और अभी इस टाइम वो 200 से भी अंदर है, 150 से भी अंदर है। तो एयर क्वालिटी इज मॉडरेट एयर क्वालिटी, ठीक है, इसमें आप सांस ले सकते हैं। रनिंग करने जा सकते हो आप लोग बाहर, आप वॉक करने जा सकते हो, ब्रिस्क वॉक कीजिए। और इसके अलावा एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को अंदर ही अंदर खाती चली जाती है। तो वैसे ही आसमान में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, पता है लोग क्या लॉजिक देते हैं, लोग कहते हैं अगर हम लोग स्मोक नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्या हमें परेशानी नहीं होगी, आसमान में इतना स्मॉग है कि हम लोग 20 सिगरेट दिन में पी रहे हैं। अरे 20 तो आप लोग नेचुरली पी रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा क्यों लेके पी रहे हो, एंजॉय करो ना इसी चीज़ को। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया गाने चलाने का एक ठेका ले रखा है मैंने। तो सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सच बताना, इस गाने को सुनकर मतलब वो डांस करने का मन नहीं हो जाता अपने आप ही। वैसे देखा जाए ना तो ये गाना बहुत ज्यादा सैड है, इमोशनल गाना है ये, इश्क तेरा तड़पावे। अब आप लोग इसमें डांस कर लेते हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड ये जो गाना था ना, इश्क तेरा तड़पावे, क्या प्यारा गाना था। बट इसको ना डांस करने वाला बनाया गया है, ये डांस करने वाला था नहीं। और खल्ले मैनो तेरे बिनता हर पल एक तन्हाई दा, मतलब हमेशा तन्हाई सी रहती है और तेरे बिना तो और इस पर हम लोगों ने खूब डांस किया। 1999 में आया था ये गाना और उसके बाद हम लोगों ने कितना डांस किया है इस गाने पे। बट अब जब मैं इसके लिरिक्स ध्यान से सुनता हूँ ना, तब समझ आता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा गमगीन गाना है। रोक न पा किया बिच्चो गम दिया बरसाता ना, आई कांट स्टॉप द रेन ऑफ सॉरो फ्रॉम माई आईज, और तारे गिन गिन याद विच तेरी मैता जागा राता नो, तारे गिनते हुए तेरे को याद कर रहा था और रात भर जागा, और योर लव टॉर्चर्स मी, इश्क तेरा तड़पावे। और इसको ना फिर से रीमेक भी किया गया था हिंदी मीडियम मूवी के लिए, बट अभी जो मैंने चलाया था वो ओरिजिनल वाला था 1999 में जो मूवी आई थी उसका। इसका एक गाने की लाइन है, दस से मैनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा, हाँ मतलब खल्ले मैनू तेरे बिनता हर पल एक तन्हाई दा, दस से मैनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा, मतलब नागिन की तरह डसता है तेरे से दूर जाना। सोचो कितना प्यारा गाना था ना, हम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया डांस कर करके। खैर ये गाना जो था डांस किया हम लोगों ने इस गाने पे। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस गाने से ना याद आता है कि बस अब कुछ ही दिनों में शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो वहाँ तो ये गाना ज़रूर बजेगा, है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए आप सभी के लिए ये गाना। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 69.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

आज एक सवाल मेरे मन में आया और ये सवाल ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मतलब देखो सुबह ठंडा था और कल रात को भी ठंडा था, तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या NCR में बर्फ पड़ सकती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। जस्ट इमेजिन फरीदाबाद में आप सुबह सुबह उठे दिसंबर के महीने में और बर्फ पड़ रही है आसमान में। ऐसा वैसे होने नहीं वाला, बट स्टिल सवाल आया था मन में कि दिल्ली NCR में क्या कभी बर्फ पड़ सकती है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रिसर्च ही क्यों ना कर ली जाए। देखो दिल्ली में ना काफी बार ऐसा हुआ है कि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है, और दिल्ली में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे नीचे भी चला जाए तो भी हमारी जो डेमोग्राफिक जो स्टेट है ना, मतलब डेमोग्राफिक जो स्थिति है उसकी वजह से, और मौसम के भी बहुत सारे कारण होते हैं उसके चलते दिल्ली में कभी भी बर्फबारी हो ही नहीं सकती। अब देखो IMD ने बोला कि बर्फबारी के लिए क्या होता है, बादलों की जरूरत होती है, और दिल्ली में बादल रहते भी हैं नो डाउट, बट ये हीट को रोकते हैं। मतलब जो सर्दियों के टाइम जो आप बादल देखते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा भी होता है स्मॉग होता है, स्मॉग के बाद फिर ऊपर बादल होते हैं, वो हीट को रोकते हैं। और दिल्ली में 0 से नीचे तापमान जाना बहुत ज़्यादा रेयर है, तो इस वजह से बारिश तो होती है बट बर्फ नहीं पड़ती है। और आप सभी को याद होगा साल 2018 जब बहुत सारे ओले ओले ओले ओले पड़े थे पूरे दिल्ली NCR में, और फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद पूरा का पूरा बर्फ वाला हो गया था। इतनी ज़्यादा ओले पड़े, इतने ओले पड़े और वो जम गए थे सड़क पर, ऐसा लग रहा था अभी रिसेंटली बर्फबारी हुई है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हाँ एक तरीका है जिससे दिल्ली NCR में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, वो है AI। बट मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा AI पे वीडियोस ना बनाया कीजिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और आज जैसे मैंने बोला था आप लोगों को गाने बहुत सारे चलाऊंगा, तो उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे।
1: मैं माझे चाशनी तू माझे खास मी तुझा सम...

0: कभी आप लोगों ने सपने में अपने आप को फेमस होते हुए देखा? मतलब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, सब दुनिया आपको जानती है और सब आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। रेडियो का गौरव, आरजे
1: गौरव। पता है ऐसे सपने ना हमेशा साइकोलॉजी, हमारी जो डिजायर्स होती है, ख्वाहिशें जिन्हें हम लोग कहते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ। एंड देखो, सपनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो इस टाइम हम लोग सपनों को डिकोड करते हैं रोज, तो सपनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, बट ज़रूरी ये भी नहीं कि वो सच ही ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कभी देखते हो अपने आप को सपने में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुके हो, लोग आपको जानते हैं, तो मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको चाहत है कि आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन मिले और इसके अलावा तारीफ की चाहत है आपके अंदर, या फिर वैल्यू, आपकी कहीं पर वैल्यू नहीं हो रही ना, तो ये सपना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट और स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, अपने ऊपर आपको भरोसा होगा अगर, तो ऐसे ही सपने आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है और आपका सक्सेस की तरफ एक कदम और हो जाएगा। यानी कि आप अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कामयाबी पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ना पूरी ज़िंदगी भर अटेंशन मिलती ही नहीं है, वो या तो अकेलापन फील करते हैं या फिर इग्नोर महसूस करते हैं, तो ऐसे सपने ये भी दिखाते हैं कि आप भी शायद ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब देखो, सपने के सिचुएशन के हिसाब से मतलब होते हैं। अगर आप फेमस होकर खुश थे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फेमस होकर भी दुख थे, परेशान थे या फिर डरे हुए थे, तो मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में भी लोगों के जजमेंट से डर लगता है। तो देखो, कभी भी पब्लिक फेयर तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक फेयर है, तभी तो माइक के पीछे बैठ के बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे ही रोज़ाना सपनों को डिकोड करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

आरजे गौरव इन द हाउस, प्यार से रेडियो को गौरव बोलते हैं, एंड एके आका आकानी एके जिम ब्रो, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और हल्की सी इंजरी हो जाती है, बैक में पेन आ गया, कंधे में पेन आ गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगा और कर लेते हैं, बाम लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो आप सभी के साथ जिम ब्रो है और जिम ब्रो आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, पेन के थ्रू हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और उस मूवमेंट को तो बिल्कुल नहीं करना है जिससे इंजरी हुई है। और एक सेट करके देख लेता हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको कि एक सेट करके देख लेता हूँ, क्या पता इंजरी अब ठीक हो गई हो, नहीं नहीं नहीं नहीं, जब तक पेन पूरी तरह से नहीं जाता तब तक आपको ये सब नहीं करना है। और इसके अलावा इंजरी को कंपेंसेट करने के लिए फॉर्म ख़राब करने वाला वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना, जिसमें फॉर्म ख़राब हो जाएगी तो और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। और पेन किलर्स लेकर पेन को मास्क करके हैवी ट्रेनिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ इसलिए सेम रूटीन पर वापस मत जाना क्योंकि पेन थोड़ा कम हो गया है, जब तक पूरी रिस्ट नहीं मिल जाता तब तक बिल्कुल भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अब देखो पहले क्या करना है, पहले इंजरी की आपको सिवियरिटी देखनी है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन है या फिर हल्की फुल्की स्वेलिंग है या फिर डिफॉर्मिटी नमनेस टिंगलिंग ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, मेडिकल इवैल्यूएशन करना है अपना। और शुरुआती फेज़ में आपको रेस्ट लेना है, पेनफुल एक्टिविटी अवॉइड करनी है और जितना हो सके मूवमेंट कंफर्टेबली करो अपनी। और इसके अलावा डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है अगर आपका पेन बढ़ता है तो। अगर लाइट पेन है तब आप रेस्ट लीजिए, रेस्ट से भी ये पेन सबसाइड कर जाएगा। और ये थी आज की जिम ब्रो की एडवाइस, और ऐसी ही ढेर सारी एडवाइस लेकर आता रहूंगा। इसके लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लड़की थी
4: आशा।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी खराब चल रही हो या फिर बहुत ज्यादा खराब चल रही हो, बट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आ जाता है डेली बेसिस पे जो कहता है, भाई तेरे तो मजे ही मजे हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? ऐसा होता है ना, काफ़ी बार हम लोगों को लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मजाक में भी कभी ऐसा अपने लिए मत बोलना, ये मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, भगवान ना ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है और उसके बाद भी हमारी कंप्लेंट्स रहती है। अरे उन लोगों को देखो जिनके पास छत नहीं है, उन लोगों को भी देखो जिनके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं है, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को देखो, क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें मिल रही है? क्या आप ठीक से चल पा रहे हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप खाना टाइम पर खा पा रहे हैं? तो से थैंक्स टू गॉड, हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं हम अपने से नीचे वाले को भी देखें, ऊपर वाले को देखें। ऊपर वाले को ज़रूर देखो, जो आपसे अच्छी पोजीशन पर है उसको देखो, मगर सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर होने के लिए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा है। आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी ब्रो, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। गीता जी में भी लिखा है कर्म कीजिए, क्योंकि बिना कर्म करे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने बारे में गलत कभी भी नहीं बोलना है। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम रिच। मैं अक्सर अपने आप में बोलता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कैसा है, मैं बोलता हूँ हैंडसम हूँ। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें बोल सकते हैं अपने बारे में। कोई पूछे कैसा है, बोल देना अमीर हूँ, क्या पता जल्दी हो जाओ। तो ऐसी ऐसी बातें बोली अपने बारे में। और देखो, आज का ज्ञान मुझे लगता है यहीं पर ख़त्म करते हैं, और रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि बातें और गाने तो चलते रहेंगे, और उसी में से आप सभी के लिए ये गाना MC Square की आवाज़ में लाडो। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ। मिलूंगा कल शाम को 5 से।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और रात के इस खूबसूरत वक्त में मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां, जहां रात थोड़ी गहरी होती है, बातें थोड़ी दिल से होती हैं और मोहब्बत को समझने के लिए हम पहुंचते हैं उन शायरों के पास जिन्होंने इश्क को सिर्फ लिखा नहीं है बल्कि जिया है, क्योंकि ये है इश्क शायराना। और आज की रात जिस शायर के साथ बैठ कर मोहब्बत को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे वो नाम है बशीर बद्र साहब। उन शायरों में से हैं जिन्होंने मोहब्बत को किसी एक डेफिनेशन में बांधने की कोशिश नहीं की। उनके यहाँ प्यार सिर्फ मिलना नहीं है, प्यार में इंतजार भी है, दूरी भी है, शिकायत भी है, मनाना भी है और कभी कभी किसी को उसकी जिंदगी में वापस छोड़ देने का दुख भी है। उन्होंने मोहब्बत को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर नहीं लिखा। उनकी खूबी यही है कि उनकी बात सुनकर लगता है अरे ये तो मैंने भी महसूस किया है, बस शब्द नहीं दे पाया। उनकी शायरी में एक लवर है जो सामने वाले से बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन डिमांड नहीं करता, वो शिकायत करता है मगर रिश्ते की इज्जत के साथ। उनकी मोहब्बत में एक सॉफ्टनेस है, एक तहजीब है और सबसे खूबसूरत बात उनकी शायरी हमें सिर्फ प्यार करना नहीं सिखाती बल्कि प्यार में इंसान बने रहना सिखाती है। और आज की रात हम बशीर बद्र साहब के कुछ ऐसे अल्फाज के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि उनकी लिखी मोहब्बत आज हमारे रिश्तों में कहां कहां जिंदा है। इश्क बाजियां पर रात अभी लंबी है और मोहब्बत की बातें अभी बाकी है। अब वक्त है खूबसूरत गाने का। रेडियो महारानी पर जुड़े रहिए, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत। स्टे ट्यून्ड।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
0: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स, सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

कुछ शायर ऐसे होते हैं जो मोहब्बत को बहुत दूर से देखते हैं, और कुछ शायर ऐसे होते हैं जो मोहब्बत को बिल्कुल पास जाकर उनकी धड़कन तक सुन लेते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का ये खास सेगमेंट इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं बशीर बद्र साहब के बारे में, जिन्होंने लिखा है, यू बेसबब ना फिरा करो कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन इसके अंदर एक पूरा रिश्ता छुपा हुआ है। कोई शाम घर में रहा करो, ये सिर्फ किसी को घर पर रुकने के लिए कहना नहीं है, ये शायद उस इंसान से कहना है जो हर वक्त बाहर की दुनिया में खुद को ढूंढता है। तो वो कह रहे हैं, कभी मेरे पास भी बैठो। आज हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, बस

दूसरी खूबसूरत बात, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। क्या किसी इंसान को पढ़ना भी आता है हमें? क्योंकि हर इंसान एक किताब है, कुछ पन्ने वो खुद पढ़ने देता है, कुछ पन्नों पर चुप्पी होती है और कुछ पन्ने इतने ज्यादा निजी होते हैं कि उन्हें खोलने के लिए परमिशन नहीं बल्कि ट्रस्ट चाहिए। शायद प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इस इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। और अगर आपके पास आज भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बिना कुछ कहे समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए ये भी एक बहुत खूबसूरत किस्म की मोहब्बत है। इसी एहसास को एक गाने के साथ थोड़ा सा और महसूस करते हैं। रेडियो महारानी सुनते रहिए, मैं हूँ आपके साथ आपके इश्क वाली गीत

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क

0: प्रोडक्ट से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां रेडियो महारानी पर। रात का ये खूबसूरत सफर जारी है और मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं उस शायर की जिसने मोहब्बत के साथ साथ मोहब्बत के बाद बची हुई खामोशी को भी बहुत खूबसूरती से लिखा, बशीर बद्र साहब। और अब उनकी एक ऐसी बात जो शायद उन सब लोगों के दिल तक पहुंचेगी जिन्होंने कभी किसी को बहुत चाहा हो और फिर उसे अपनी जिंदगी से जाते हुए देखा हो। बशीर बद्र साहब कहते हैं, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। कभी सोचा है हम किसी को भूलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि शायद हमें उस इंसान की उतनी आदत नहीं होती जितनी उससे जुड़ी उम्मीद की। उम्मीद की कि एक दिन उसका मैसेज आएगा, एक दिन वो समझेगा कि उसने क्या खोया है, एक दिन वो वापस आएगा, एक दिन वो कहेगा मुझे तुम्हारी याद आती है। और इसी एक दिन के इंतजार में हम कितने सारे आज बर्बाद कर देते हैं। बशीर साहब कहते हैं, जिसने तुम्हें दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। कितनी मुश्किल बात है ना, क्योंकि किसी को भूलना सिर्फ उसका नाम भूल जाना नहीं है, किसी को भूलने का मतलब उस कहानी का वो आखिरी पन्ना भी बंद कर देना जिसे हम बार बार पढ़ते रहते हैं। और शायद हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप ये उम्मीद करना बंद कर दें कि सामने वाला वापस आएगा, फिर अचानक आपको महसूस होता है कि जिंदगी में रास्ते सिर्फ एक नहीं होते, अभी राह में कई मोड़ है। कितनी खूबसूरत उम्मीद है इस लाइन में, जिसने आना था वो चला गया लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है अगले मोड़ पर आपको कोई ऐसा मिले जो आपको छोड़ने के बहाने न ढूंढे, जो आपके साइलेंस को भी पढ़े, जो आपके साथ रहना सिर्फ अच्छे दिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी अगला इंसान आने से पहले हमें खुद के पास वापस आना पड़ता है। तो अगर आज की रात किसी का नाम आपके दिल में है और आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, तो आज उसे वापस पाने की दुआ मत कीजिए। बस इतना कहिए, जहाँ भी हो खुश रहो और मुझे भी तुम्हें भूल कर खुश रहने की ताकत मिल जाए। शायद यही खूबसूरत क्लोजर है। और इसी एहसास के साथ अब इस रात में एक खूबसूरत गाना शामिल करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, मैं हूँ आपके साथ आपके इश्क वाली गीत और इश्क बाजियां में ये सिलसिला अभी जारी है। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी एंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. Radio Maharani पर रात धीरे धीरे और गहरी हो रही है और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। तो आज के इश्क बाजिया में हम बशीर बद्र साहब के साथ मोहब्बत को थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब तक हमने बात की किसी के आने की, किसी के जाने की और उस इंसान को भूलने की जिसने हमें अपनी जिंदगी से भुला दिया। लेकिन मोहब्बत की एक और शक्ल होती है, किसी को संभालना। बशीर साहब लिखते हैं, ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इन्हें आंसुओं से हरा करो। एक उदास पेड़ की तस्वीर है यहाँ, पतझड़ में खड़ा हुआ एक पेड़ जिसकी शाखों पर शायद अब कुछ बचा नहीं है, और शायर कहते हैं ये तुम्हारे घर की बहार है, इन्हें आंसुओं से हरा करो। यानी जिस चीज को तुम आज तक सूखा हुआ देख रहे हो ना, हो सकता है उसमें अभी भी जिंदगी बची हो, बस उसे थोड़ी मोहब्बत चाहिए। और शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, हम किसी इंसान को देखते हैं, वो चुप है, इरिटेट है, दूर है, और हम तुरंत कंक्लूजन निकाल देते हैं, इसका एटीट्यूड बदल गया है, अब इसे फर्क नहीं पड़ता, शायद प्यार खत्म हो गया है। लेकिन हम उसे ये पूछना भूल जाते हैं, तुम थके हुए हो क्या? हो सकता है सामने वाला आपसे नाराज नहीं, बस जिंदगी से थोड़ा सा परेशान हो, हो सकता है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, बस खुद के अंदर बहुत कुछ संभाल रहा हो। और ऐसे वक्त में प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उसके पास बैठकर कहें, कोई बात नहीं, तुम बोलना चाहो तो मैं सुन रहा हूँ, नो जजमेंट नो एडवाइस, बस प्रेजेंस। क्योंकि कुछ लोग सोल्यूशन से नहीं सुकून से ठीक हो जाते हैं, और शायद इसीलिए बशीर बद्र की ये लाइन सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये हमें रिलेशनशिप्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है। जब कोई आपके प्यार में अपना घर समझने लगे तो उसकी उदासी को भी अपने घर की चीज समझिए। हर वक्त उसे खुश रखना आपकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जब वो टूट रहा हो तब उसे अकेला छोड़ देना भी प्यार नहीं। तो आज रात अगर कोई आपके साथ थोड़ा सा चुप है, थोड़ा खोया हुआ है या बिना वजह के बस उदास है, एक बार उसके पास जाइए, शायद उसे आपकी कोई बड़ी बात नहीं चाहिए, शायद सिर्फ आप चाहें। और अगर आज की रात आपने किसी के दिल में छोटी सी भी बहार लौटा दी ना, तो यकीन मानिए उससे खूबसूरत इश्क कुछ नहीं है। मैं आपके साथ हूँ आपके इश्क वाली गीत, ये था आज का इश्क शायराना बशीर बद्र साहब के साथ। अब इस खूबसूरत एहसास को एक खूबसूरत गाने के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रेडियो महारानी पर आप मेरे साथ बने रहिए।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो ज़रूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहां दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये

रह गई इंडिया में, लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा, क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें, और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी शार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुंच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 9.6 FM. कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहां ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहां हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता ना?

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड

फ्लैग का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो। ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक।